जागमग तेज पूर्ण प्रताप अमर जमीन जय जब जान सातो ता सातो पतार वितरियो अदृष्ट।

जिना जिना हथा तो ए माया चली आ रही है। जानी जान सतगुरु संगता दिया शुमरो कामना पूर्ण करनिया कार दरास करने नाम वाणी दी दात बख्शनी यात्रा सफली करनी।

तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रियोघर जोग जति के सूर्य सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुभूतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पुह बली वेदन्यावसी।

मलिंद मवासन माती गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबातनी चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाजक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन्न प्रतापन बाढ़।

साज समूह प्रसंग फिरा जाग सतुर स्वभाव लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जौंद्र लोग को राज करेंगे कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे

कूट इंद्र निरपार के ब्रह्म भीषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंध नगेंद्र कई माछ कच्छ फणेंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण।

अवतार। कई वृष ब्रह्म वेद रटंत, कई शेख नाम चरंत, बैठ उस न्यास को फिरत रूप उदास, सब कर

हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अपेव हरि अजेव।

एक ज्ञान के विहीन शीन कैसे कहतरत है। भूत बंचारी चित छौना सब दूध धारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजया दे तो गौवन के जया ब्रेग भैया मानियत है। नाभ के उडया ताए पंछी की बड़ैया दे तो बगला बड़ा ब्रेग ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जान पे बखानी नाहे ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बस जाता है भूजरी के जैया कह नभ के उडैया सोच रैया कह बखानिया। फल के बस जाता है बांदरी के जैया कह आधे से फिर आते तो भूत क्या पछानिया। जाल के तरह को गंगेरी से कहा तो जाग आगे बसिया सोच गोर साम मानिया। सूरज सिवैयाता है कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि का पहचानिया। नारायण कच्छ मछ तेंदुआ कहत सब

मोरलोर पीटत ना गूढ़ता को भेद पावे, पूजत न ताहे जागे राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरिसाल, सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी।

जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे शत्रधारी बढ़ो अभिमान।

सिच दे करे अनेक तोप ची कपट भेस पोस दी अनेक दानी वावत है सीस का कहा भयो मल्ल जो पै काढ़त अनेक दंड सुतोना दंडौत अष्टांग।

मसी सुई पूजा निवाज उई मानस बैग पै अनेको ब्रह्माव है। देवता देव जक्ष गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक का

जैसे एक धूर से अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फेर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद से तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाएंगे। केते गच्छ मच्छ केते उनको करत पक्ष, केते अच्छ वच्छ होए तो पक्ष उड़ जाएंगे। केते नव बीच अच्छ पक्ष को करेंगे पक्ष, केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कह धल कह गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल ही चवाहेंगे। तेज जीव अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग बासी किते मदीना मक्का निवासी, केतक उदासी के भरमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त, किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के भी जग जा रही मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगा हरे चुआ चार, पूजा हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी। गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट, लीप हरे भीतर लगाए हरे शापसी। गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब, पच हरे पंडित तपंत हरे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयात छंद, न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न तामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न पामं। अलेखं अभेखं अजोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा।

कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र धारण कहु जंत्र रेतंग कहु शस्त्र धारण कहु होम पूजा कहु देव अर्जा कहु पिंगलाचारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरज भाग्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नागवाणी कहु कारडू गूढ़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहु शैल शाला धरी क्षत्रधारी कहु

अंतुट तेज अंखुट भंडार दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशिज काद करता सजीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जैसा त्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत पान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जा।

जयत्रास वास नहीं देह नाजया दांत नहीं रूपरास जय रोग सुख नहीं जोग जुग जय त्रास आस नहीं पूम पुघत जय काल व्याल कटियो न अंग अक्षय स्वरूप अख अभंग जय नीत नीत उचरंत बेद जय अलख रूप कथत कतीब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलव जोग साधत दुरंत संतनसीत घांबर का सहंत कई करप एक आसन बितांत कई जतन जोग विद्या विचार साधांत तद पावत ना पार कई उर्द बादेशन ब्रह्मांत कई उर्द माध पावक झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरांत वेद कई को काप कथत कतेब गयागन होत गई पौन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भाच नहीं जदव देव होत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहू वेद रीत जग्याद करम कहू अगन होत्र कहू तीरथ धर्म कई देश देश भाकार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकता स्पायत ना पार कई तीरथ तीरथ भरम सुभरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता स्पायत ना पार कहू राज रीत कहू जो धर्म कहू सिमृत शास्त्र उचर सुकरम निवली आद करम कहू हस्त दान कहू अश्वमेध मक्को बखान कहू करत ब्रह्म विद्या विचार कहू जोग

कई करत कूड़ विद्या विचार ने तरफ देश देखी मुरार बिन भगत सगत ने परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीना फोकटो सर्व धर्मा विहीना तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पोह जुगण जूह जुअंग भय कंपोह मेर पयाल भुअंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचिरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग खंड अभूत अशेद अशियंग अनकाल अपाल दयाल असुवंग जय ठट्टियंग मीर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सबकीनी दीन जिमीन जमा जय रचियंग सरब मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सुख सुखंग जय रोग न सुख न भोग उवंग जय खेद न भेद न शेद शयंग जय जात ना पात ना मात पितंग जी रचियंग क्षत्रि क्षत्र छितंग जय राग ना रेग ना रोग भणंग जय द्वैघ ना दाग ना दुख गणंग जय अंध ते ब्रह्मांड रचियो दश्चार करी नव खंड सचियो राज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आ प्रचंड लियो श्री सिंधर बिंद नगिन नगंग श्री जाक्ष गंधर फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज से तज उत भुजंग किए देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न प्रहत सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुवंग जय जंप है किन्नर जा छुजुअंग नर नारद पुसंग जाय किए गण किन्नर जा छुजंग दिए गज बाजर तादिक पांद गणंग पहु कुहूत पवेख भवान तुवंग जे अंडज से तज देर रजंग अच भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बंजास कियो फल फूल कली पुव मेर आकाश निवास हितंग रज रोच एकादश चंद्र प्रतंग दूत चांद दिनीस दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अंधूत अभूत अशूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अच्छेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सूग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आद सिरंग जय पंडत देव अदेव नरंग गण किन्नर जाच्छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पारना पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत

सुत सेंध अधोमुख ताप तप कई काल पल्लो तप ताप कर निन कृपा निध पान पर जय फूगण धर्म सब एक चित कृपा निध को जप है तेउया भव सागर को उतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक ना बिना ने कोड वृत्ति एक एम्बे

देव है भंज भंज जानिए, अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है, अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा, अगंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप।

तात्मात जात है न पाच्यन भरण है अधिक अधिक अभिक है सदैव विश्व भरण है विश्व अम्बर विश्वनाथ है विशेष विश्व भरण है जिमी जमान के बिखै सदैव करम परम है अद्वैक है अभिक है अलेख नाथ जानिए सदैव सर्व ठौर में विशेष आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नीत नीत क्या बतावई न कर्म में न धर्म में न परम में।

ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है, ना हान है ना बान है, समान रूप जानिए, मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए, ना देह है ना गेह है, ना जात है ना पात है, ना मंत्र है ना मित्र है, ना तात है ना मात है, ना अंग है ना रंग है, ना संग है ना साथ है, ना दुख है ना दाग है, ना द्वैग है ना देह है, ना सिंह है ना स्यार है, ना राव है ना रंग है, ना मान है ना मौत है, ना साख है ना संग है, ना जच्छ है ना गंधर्व है, ना नर है ना नार है, ना चोर है ना शाहू है, ना साहू कुमार है, ना नेह है ना गेह है, ना देह को बनाओ है, ना शल है ना छिद्र है, ना शल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न शल है न छिद्र है।

ना सीत है ना सूच है ना घराम है ना घाम है, ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है, ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है, ना शल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है, ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है, ना द्वैक है ना भेक है ना द्वी है ना द्रुह है, न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है, अगंज है भंज है भरम है भूत है, अशेद शेद है सदा।

तव प्रसाद रुआमल शंद रूप राग नारेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाध पुरख सुधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाकु आदि पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठोर मैं निर्धार जाच पात न ताज जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठोर बिखे रमियो जे चक्र चिह ना चित्र आद देव उदार मूर्त अगा

अगन बाए जले थले महे सर्व ठौर निवास देह गेना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चिन्ह वरन जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदेव अपाल दीन बंध प्रवीण त्रिपा।

नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत त्याय त्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपच्छ्र अपार सोद सोद थके।

दामनिदमंकण तुझा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विबरखण दुष्ट प्रगलखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अधे दामनि प्रहासन सो छब निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गति रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते श्रोणांत अचिंती अनल विवंती योग जयंती खड़ग तरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट

सती स्नान अष्ट प्रभान भूल निवान तेज अतुलं जय जय उसी में खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलं चाचर चमकारं चिच्छुर हारं धूम दुखारं द्रप मथे दाढ़वी प्रतंते जुग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतिजन अष्ट पुजे जय जय होशी मह खासुर मर्दन परम विनाशन धरम धुजे कंगुरु कमकण शस्त्र चमकण फणि अर्फुंकारण तरम तुझे अष्टाट प्रहासन सृष्टि निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे अगम अथाहे एक वृते जय जय होशी मह खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंद दुष्ट निकंदन भ्रष्ट बनासन मृत मते कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसूहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होशी मह सब ठौर निवासन बाए पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तोंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल दयंती आद अनाद अगाध अशे शुद्ध तात्मर्पण तरक बितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग अलग भुजंगी तोंद तुरंगण तिछ सरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर पुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होती रक्षा सुर खंडन सोम्भ चक्रत्नि सोम्भ मथे बारज बलोचन बृतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रघासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दुष्ट गसे चंचला प्रयंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जा जा होसी मह खासुर मर्दन आद अनाद अगा दुर्धंग घंट का विराजा रुण जुण बाजा भ्रम भय भाजा सुना सुरंग कोकल सुन लाजा किल बिग भाजा सुख उप राजा माधुरंग दुर्जन दल दज्झ मंथन रिज्झ सबन पज्जारोहरण जय जय होशी मह खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर बिते धुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग भजुंसन शुद्ध मते जाल पयंती शत्रु मतंते दुष्ट प्रधान गुआड़ मते जय जय होशी मह खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते प्रलाज विहंडन छर दंडन तेज प्रचंडन आद भृते तुरनर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशी मह खासुर मर्दन विश्व भजन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रधरखण बितल तले अष्टायद बाहन भूल निबाण संत पणाहन गूढ़ गते जय जय उसी मह खासुर मर्दन आद अनाद अगाद भृते दुख दुख प्रबच्छण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण सूर सरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होशी मह खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतिली तोंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद भृते डुगडुगी दमंग बाग बबंग पुजा फरंग शोध गते जय जय होशी मह खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक पटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चार नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय होशी मह खासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान आर्दन बिड़ाल बधे सरदार विवखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम दुजे धुमराज विधुंसन सुरन सुनतन सोम्भ न पा

कई मूल पद्र पूजा करन कई सिद्ध सा सूरत सिवंत कई पलट सूर सिजदा कराए प्रभु एक रूप द्वा कह रखाए अंशे जि तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्भय अनाश सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामन कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल जल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पाप नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दू एक बार अच्छा।

कवंजा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चह नहीं रंग रूप जय खेद मेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धं बृहत सिद्धं स्वरूप बुद्धं अपाल युद्धं अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशे जितेज अनभिज अदाग जल धल मही बंत अंदुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीना दुग्धता उदार कई कोट इंद्र जय पानहार कई रुकोट रुद्र जुगिया द्वार के वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करा निशांत उबार कनियमन गारा पाछ पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया निध दुख देखत है पर देत नहारा दाद है दुख दुखन को दल दुजन के पल मैं दल डारा खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रिय संभार पार न पा सकया पद्मा पद भेद गति अभेद उचार रोज राज लोकत राजिक रोग रोहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग पुजंगम भूत भविख भवान बनाई देव अदेव खपे अहंग में न भेव लखे।

काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय देह विहीन स्नेह सबूत नेह विरक्त अगेह अशह जान को देत अजान को देत जमीन को देत जवान को दह काहे को डोलत है त

अपनो कर दया कर पाव शंभू न पेटन पावा। और की बात कहा कह तू सौ सुपेट ही के पट बीज बचावा। जाछ भुजंग सुदानव देव अभेव तुम सभी करते हव। भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब सिरने।

से सब हुए मिल गायो वेद गते अपना भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सगर नहीं पार उमापत से दसनाथ सनातन त्यायो त्यांत रोते को मन में यह को अमितोज स

ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना शोक ना सांग तिहारी आद अनाद अगाधा भेख अद्वैग जपियो तेरे गुलतारी तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महावृद्धारी देश विरो कर भेष तपोधान केस धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे।

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया मा सत्रन के सालु है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। जोध के जितैया बेरो

पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमालत आवे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जुग जोग साधा पौन साधना की तेक बाध है आरब के आर भी आराधा तेरे नाम है। फरा के फिरंगे मान कंधारी कुरेसी जाना पच्छम के पच्छम।

भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रूह के रोहले मांग देश के मघले वीर भंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गाव चीन मचीन के शीस ने आवे तिब्बते देहाय दुख देह के दलत है। जिना तो हित आयो तिना पूरन प्रताप पायो सर्व धाम फल फूल।

अवतार किते राम कहियत है, किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी योग द्वार रहियत है, किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है, करते है विचार पैना पूरा न को पावे पार, ताई ते अपार निराधार रहियत है, पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार कै बखानिया, अद्वै विनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूपु के राशि है अनासी क्या गमानिया, जंत्र हु न जात जाकि बाप हु न मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कै अन मानिया, तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को यंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र क्या क्या जानिया, तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है, कामना की खान है के साधना की सार है, विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है, सुंदर स्वरूप है के पूपन को पू

सिद्ध को स्वरूप है के बोध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अशय विनाशी है काम को गुणिंद है के खूबी को देहंद है गनी मन गरिंद है के तेज को प्रकाशी है कालों के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की बासी है जोग को यंत्र है के तेज को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरण प्रकाशी है रूप को निवास है के बोध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है यमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर।

हिंगुलाहि मन लगावे हब हब सिहल बित हवे पूर्वी न पार पावे असते अनास है देवन को देव महादेव हूँ को देव है निरंजन अभेवनाथ।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम शाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के शीर कद शिरावद छात कद छतरा नीर छपा कर कद शब कालिंद्री के कूल के हंस नीति सियारो मीरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलव गढ़ रूप कैसी रामपुर सोराती सुरंगाबादनी के रही चूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरती हरी।

शोभा बसंत जहत प्रडुल्ल बन तन दुरंत खग मृग महान जहत प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लह लहत मोर फिर ढुरहे जान मन मथ चौर गुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान

जह तह प्रफुल्ल सुंदर सुजान बन तन महीप जल थल महान जह तह प्रसोह करुणा निधान जग मगद तेज पूरण प्रताप अंबर जमीन जय।

घड़ घड़ के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते।

कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेच करो रणघाता। जे अस दुजतव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटा।

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन ददार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन

इतिहास का मान 100-100 रुपया करके गए ने। मैं उन्हां दी कदरवानी का धन्नवाद करदा हां। जो भी गुरु के दरबार विचों मनुख भावना लैके आउंदा है, आस लैके आउंदा है, गुरु का दरबार बड़ा उच्चा ते सुचा है। जो कुछ भी मंगेगा गुरमत अनुसार उस नूं प्राप्त हो जाएगा। मैं गुरु के चरणों में अरदास करदा हां, कलगियां वाले पातशाह महाराज जी, जिहड़ा जीव भी आप जी के चरणों उत्तों मंगता बन के मंगण वास्ते आउंदा है, महाराज उहदियां झोलियां भर के घलाया जी। आओ कविता दीआं लाइनां आप जी की खिदमत विच इस तरह ने सरवण करो।

अपने घर प्रसाद बना ले, पंजा सिंगा ताई शिका ले, उन्ना तो अरदास करा ले, गल जानी चल लिया, अपने दिल विच रख तसली।

लाडली फौज अति सत्कारयोग गुरु की लाडली फौज गुरु के निहंग सिंह उन्हां वल्लों इतिहास का माण बेअंत माया आई है। गुरु साहब चढ़दियां कला गुरु की फौज करेगी मौज। गुरु साहब जी अपनी फौज के सिर ते आप मेरा भरिया हथ रख के खुशियां दे खेड़े बख्शिश करन। असल विच जिहड़ा मनुख श्रद्धा ते भावना दे नाल निम्रता दे विच आ के ते गुरु की सेवा करदा जां गुरु दे सिखां दी सेवा करदा है ना उहदी भावना जिहड़ी है उह संपूर्ण हो जांदी है। हुण इसे तरह भाई लाल सिंह ने श्रद्धा दे नाल भावना दे नाल जिहड़े गुरु के प्यारे सिखां दा प्रशादा वरतिया सी ना उह जदों आए उहने बड़े प्रेम दे नाल भावना करके श्रद्धा करके गुरु का रूप जान के उन्हां नूं प्रशादा छकाया। गुरु की देग बनी उन्होंने अरदास की प्रशाद वरताया। अरदास जदों की ना जां हर एक मनुख जदों प्रशादा छकदा है जिहड़ा गुरु का सेवक है ना वह गुरु का शुकराना जरूर करता है। जिथे गुरबाणी विच फरमान आउंदा है जिसका दिता खामना तिस कहिए सहवास नानक हुक्म ना चले ही नाल खसम चले अरदास। ये हर गुरु का सिख जिहड़ा है अरदास करता है। जदों गुरु के प्यारिया ने प्रशादा छकिया गुरु की देग वरताई अरदास की आखिर विच कहा कि जो भाई लाल सिंह की मानों की कामना है ना वह संपूर्ण करो गुरु जी। आप जी का प्यारा सिख है और निम्रता दे नाल प्रेम वस हो के इसने सेवा की है। छोटा बच्चा अपनी माता पिता की गोद का शिंगार इतिहास का माण 100 रुपया करके गया है। गुरु साहब उन्हें विद्या की दात बख्शिश कर तंदुरुस्ती की दात मापिया का आगा आग्ञाकार बख्शिश कर गुरु साहब जी। मैं गुरु के चरणों में बेनती करदा जे इस वक्त भाई लाल सिंह हाथ जोड़ के ते अरदास दे विच खड़ा सी और गुरु के सिखा ने आखशी शब्दावली कही नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। और जिहड़ी ढाल सी ना उहनू ऐ जापिया भी मेरी ढाल वाकई गुरु दे सामने जाके ते मेरी वह गलती बख्शवा देगी। जो मैं सेवा कीती है ना वह मैं बख्शिया जावांगा। गुरु के सिखां दे विच आप वरतदा है गुरु विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। कलगियां वाले पातशाह महाराज ने कहा सी मेरे दर्शन दीदार करने होण ते पंज सिंह सजे धजे होण ते उहनां विचों मेरे दर्शन हो जाणगे। एक सिख ने कहा महाराज बई जे पंज ना होण ते कहण लगे कोई गल नहीं चार होण फिर भी दीदार होणगे। एक सिख फिर खेड़े पै गया कहिंदा महाराज जे चार ना होण तीन होण कहिंदे फिर भी दीदार होणगे कि दोही संगत है ना। और फिर सिख कहिंदा महाराज भी जे 1.25 लाख फौज ही होए ते कहिंदे भी जिहड़ा सजिया धजिया होएगा ना गुरु का सिंह कि तुसीं उहदे भी दीदार करोगे। खालसा मेरो रूप है खास ये मेरा खास रूप खालसा है मैं उहदे विचों ही तुहानूं दीदार बख्शिश करांगा। मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज जी दे उहनां महान सिंघां दी सेवा प्रशादा छकाया भाई लाल सिंह अज ढाल लै के ते मेरे बाजां वाले माही दे सामने जो जाके भेटा की अद कुछ जान का लहजा होर सी। आप जी समझते हो गए एक मनुख जिहड़ा हंकार विच आया वह सेवा कर रहा वह किसी लेखे विच नहीं। यह मैं नहीं कह रहा गुरबाणी का फरमान है बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार वह किसी लेखे विच नहीं। पर जे निम्रता विच आ के मनुख तन मन नूं जोड़ के सेवा कर लै

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुम्ही सब तो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सचता तुम्ही सब कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी।

कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़।

जादू पिले आया वृंदावन में रंग किया। कल मैं बेदत पर हुआ ना उगाई हो पया, नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तू प्राणी अमल किया।